0: तरह का ब्रेक लेना अच्छा है, लंबे समय तक बैठना सबसे ज्यादा नुकसानदायक है।
1: इधर उधर घूमना नहीं छोड़ना चाहिए। हम पूरे हफ्ते हर दिन 8 से 10 घंटे अपने डेस्क पर बैठे और फिर वीकेंड पर एक बार झील के पास दौड़ लगाकर सोचें कि भरपाई हो गई। ज्यादा जरूरी है कि हम अपने दिन में छोटे छोटे मूवमेंट करें।
0: एक्टिव लंच ब्रेक से इंजीनियरिंग ऑफिस के कर्मचारियों को काफी फायदा हुआ है।
2: मैं देखती हूँ कि जब मैं कुछ वक्त ये नहीं कर पाती, जब काम ज्यादा होता है और कुछ सेशन छूट जाते हैं, तभी मुझे अपने शरीर पर इसके प्रभाव नजर आने लगते हैं।
0: लंबे समय तक बैठे रहने से आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए अब काफी कंपनियां अपने कर्मचारियों को दोपहर में एक्सरसाइज के लिए ब्रेक दे रही हैं।
3: एक्टिव ब्रेक देना कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि उसे कर्मचारी ज्यादा फिट और स्वस्थ रहेंगे, कंपनी का कर्मचारियों के बीमारी पर खर्च घटेगा।
0: ब्रेक के दौरान टहलना भी अच्छा है, सबसे अहम बात है चलते फिरते रहना, खासकर खाना खाने के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज की कमी से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है।
1: जब हमारी मांसपेशियां लंबे समय तक निष्क्रिय रहती हैं, तो उन्हें कम ब्लड शुगर की जरूरत होती है, यानी ग्लूकोज हमारे खून में रहता है लेकिन मांसपेशियों की कोशिकाएं और अन्य कोशिकाएं उसे अवशोषित नहीं करती, इसलिए लंबे वक्त तक बैठने से डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है।
0: डायबिटीज, हृदय संबंधी बीमारियां, पीठ दर्द और कैंसर भी, बैठने से इन सभी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी हो सके थोड़ा इधर उधर घूमना अच्छा रहता है, कई बार सिर्फ खड़े होने से भी मदद मिल सकती है।
4: ये जरूरी है कि हर 45 मिनट में कुछ न कुछ किया जाए, यानी मांसपेशियों के प्रमुख समूहों को सक्रिय करना। कम से कम आप स्ट्रेचिंग तो कर ही सकते हैं, जैसे टेलीफोन रिसीवर को हाथ में लीजिए और टहलते हुए बात कीजिए, कॉफी मशीन तक चल कर जाइए या पानी का ग्लास लेकर आइए। मुख्य बात यह है कि अपने मेटाबॉलिज्म को रुकने नहीं देना है, बल्कि इसे सक्रिय रखना है।
0: लेकिन अकेले यही करना काफी नहीं है, दिन भर काम करने के बाद आपको नियमित तौर पर कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन सुझाव देता है कि हर हफ्ते 5 घंटे की हल्की फुल्की एक्टिविटी करनी चाहिए। अच्छा होगा ये थोड़ी थकाऊ हो और ज्यादा से ज्यादा मांसपेशियों पर जोर पड़े, क्योंकि घूमने फिरने से सुस्त जीवन शैली के नकारात्मक प्रभावों से काफी हद तक निपटा जा सकता है।
5: बिल्कुल जी, इहदा पूरा ध्यान रखना चाहिदा, क्योंकि अक्सर आपां सोच रहे हैं आराम करना जरूरी, आराम भी बड़ा जरूरी है। जिस तरीके नाल मशीन नूं आराम देना पैंदा, शरीर नूं भी आराम देना बड़ा जरूरी है। चंगे तरीके नाल प्रोपर सोना जिहड़ा है वो इहदे वास्ते वधिया है। विच छोटी छोटियां कई वारी जिहनूं कहिंदे कैट नैप जां नैप लैणी, 15 मिंट तुसीं जे सो जांदे हो ते उहदे नाल भी तुहाडा शरीर जिहड़ा बड़ा एनर्जी जिहड़ी है उह कंज्यूम कर लैंदा, ते फिर तुसी रिफ्रैश हो के ते दोबारा तो काम दे उत्ते लग जांदे हो, अपना काम जिहड़ा कर लै पैंदे। सो सौण दा आराम दे नाल जिहड़ा संपर्क हो गया, कई वारी आपां आराम करके चेयर दे उत्ते भी आराम कर लैणे थोड़ा बहुत, वह भी जरूरी है। बट उस तो इलावा जिहड़ा जरूरी ज्यादा वह यह है कि भी तुरदे फिरदे रहना 3.5 घंटिया तो लैके 5 घंटे तक तुहानू मिनीमम, जिहड़े एक्सपर्ट अलग अलग जिहड़े ने वह कहिंदे आ वी इन्ना तुहानू वर्कआउट, चाहे वह तुरना दौड़ना मिक्स, नॉट ओनली जस्ट, कई बार आप सोच लें सिर्फ आपां ते वॉक करते हैं डेली घंटा वॉक कर लें तो उहदे नाल, पर वह कल्ली वॉक जिहड़ी है वह बहुत ज़्यादा असर नहीं पाती तुहाडे शरीर के उत्ते। जे अपने शरीर को तंदुरुस्त ते वधिया रखना, कल मैं एक ब्रेन के स्पैशलिस्ट डॉक्टर उहदी सुन रहा सीगा इंटरव्यू, तो दसदी भी 5 लाइफ स्टाइल तुहानू जिहड़े ने अपने अपनाने चाहिए ने जिंदगी दे विच, ताकि तुसी अपनी लाइफ नूं जिहड़ा वधिया तरीके नाल जी सको, जिहदे च लाइफ स्टाइल तो इलावा इलावा, क्योंकि वह समूथी भी समूदी जिहड़ी है वह भी पीना पसंद करदे आ नाल दी नाल, क्योंकि सवेरे जदों आपां समूदी पीने आ ते बेसिकली समूदी दे उत्ते ज़्यादा गलबात कर रहे सी, नाल दी नाल जिहड़े साडे लाइफ स्टाइल चेंजिस ने उहदे उत्ते भी वर्कआउट कीता गया। सो समूदी दे विच केल जिहड़ी है बड़ी इंपोर्टेंट है, जिहड़ा अक्सर आपां कई वारी सोचदे हां उमर दे नाल साडी ਯਾਦਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਬੈਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,

0: ਕਿ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਰੋਕ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਨੇ ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ
1: पर हुक्मरान बने बैठे हैं सत्ता के नशे में चूर क्या है हमारे पास खोने को
2: आज 9 तारीख है और ऑलरेडी रिपोर्टिंग हो रही है किस तरह से मेट्रो स्टेशंस को बंद करने के ऑर्डर्स हैं ट्रेन्स कैंसिल की जा रही हैं लेकिन जमीन पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूं प्रोटेस्ट का कॉल आज नहीं है फिर भी देखिए ये हम लोग सेंट्रल दिल्ली में खड़े हैं और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये सड़क यहां से सीधी दिल्ली के आइकॉनिक कनॉट प्लेस के लिए जाती है ये सड़क सीधी कनेक्ट करती है वो सड़क ब्लॉक्ड है आपको एक और दिखाता हूँ देखिए यहाँ से ये रोड इस रोड का नाम ही जंतर मंतर है और ये रोड सीधे जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट साइट को कनेक्ट करती है ये रोड भी आप देख सकते हैं दीपक दिखाएंगे आपको पूरी तरह से सील्ड है यहाँ पुलिस पर्सनल भी प्रेजेंट है और वो बैरिकेड्स हैं ये रोड सील्ड है और आखिरी में इस तरफ वैसे ये यूथ कांग्रेस का दफ्तर है और जो रोड आपको दिखाना चाह रहा था जो आखिरी रोड है यहाँ से बाहर जाने वाली ये रोड संसद मार्ग मतलब संसद को कनेक्ट करती है पार्लियामेंट को ये रायसेना रोड है ये भी पूरी तरह से ब्लॉक्ड है यानी हम जहां खड़े हैं सेंट्रल दिल्ली में हम भी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं एनीवे आपको बताना चाहते हैं कि वैसे तो 10 तारीख के प्रोटेस्ट का कॉल और उसमें जो प्रमुख एक्टर्स हैं वो कांग्रेस जनता पार्टी है नेहा बोरा है ऐसे कुछ नेता है लेकिन हम ऐसे कई छात्रों से मिले ऐसे कई छात्र संगठनों से आज हमने मुलाकात की जो शायद इतने प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन वो अपने तरीके से इस प्रोटेस्ट में सरकार की तमाम अपील्स कहें मेजर्स कहें या टैक्टिक्स कहें इन सब के बावजूद वो आज सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो भी कल प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं तो ये लोग कौन हैं और ये क्या चाहते हैं ये कहानी उसकी है
3: सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ पे ना पहुँचने दिया जाए आपने देखा होगा कई तरह के विजुअल्स आ रहे हैं लोगों को घरों पे डिटेन किया जा रहा है रेलवे स्टेशन से डिटेन किया जा रहा है बस से उतारा जा रहा है
4: हम कैंपेन्स कर रहे हैं कैंपस के अंदर ही कि क्योंकि जरूरी है आज के टाइम पर जिस तरीके से युवा जिस तरीके से और भी स्टूडेंट्स एक कॉन्शियसली अपने उनको प्रेशराइज नहीं करना पड़ा कि आप आइए आंदोलन जोड़िए कि एक उनको दिख रहा है कि इस देश में कुछ तो बेकार चल रहा है उस बेकार के चलते वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सामने तो उनको मोबिलाइज करने का हम लोग अम्बेडकर स्टूडेंट ए उस चीज के लिए काम कर रहे हैं लगातार कैंपस के अंदर
5: जब जब राजा डरता है वो पुलिस को आगे करता है तो वो चाहे जितना पुलिस लगा ले चाहे उनका 50,000 हो चाहे 5,00,000 हो ये देश का स्टूडेंट है यूथ है ये पीछे नहीं हटने वाला ये एक तरीके से नेशनल मूवमेंट की तरह बनता चला जा रहा है
1: हम आज यहाँ पर मौजूद हैं कल 10 तारीख है और पिछले कई दिनों से कई हफ्तों से हमें जानवरों की तरह खदेड़ कर इस व्यवस्था द्वारा बसों में जेलों में थानों में मरा जा रहा है कल हो सकता है हम किसी ट्रॉमा सेंटर में मिले हो सकता है किसी अज्ञात थाने में किसी रोशनी तक न आने वाले कमरे में बंद हो पर ये बताना चाहते हैं कि आप जनतंत्र में लोकतंत्र में न्याय की आवाज को किस काल कोठरी में डाल देंगे किस अंडासेल में आप डाल देंगे
3: और सबकी तीन मांगे हैं जो स्पष्ट हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो SIR को रद्द किया जाए और जो 2023 में जो CEC के लिए जो कानून बना था उसको रद्द किया जाए
4: चाहे कितना ही पुलिस फोर्स बुला लो और सब वैसे स्टूडेंट है कि उनको मिलने के लिए बहुत कुछ बचा है खोने के लिए बहुत कम है पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं तो जब उनको लग रहा है कि इस बार मौका है एक हिस्टोरिकल इवेंट में एक हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट में अपना दर्ज दिलाने की उस बढ़ती जब देश बदल रहा था जब देश के युवा लोग खड़े थे तब तुम लोग कहाँ थे तो उस क्वेश्चन को भी डील करते हुए छात्र आज इस आंदोलन में जुड़ रहा है
5: कल का तो कुछ कहा नहीं जा सकता ये है कि सभी देश के सभी सभी हिस्सों से बच्चे निकलेंगे यूथ निकलेंगे और जिनका वोट्स कटा है वो भी निकलेंगे और कल अभी आज तो हम आपसे बात कर रहे हैं कल पता नहीं कल डिटेन किए जाएंगे

0: किए जाएंगे, लेकिन एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो मूवमेंट होने वाला जा रहा है कल, उससे ये तो श्योर हो जाएगा कि देश का युवा अब जाग चुका है, देश का नागरिक जाग चुका है, अब यहाँ एक तरीके से रेनेसा मूवमेंट होने वाला है, पुनः जागरण। डर का तो माहौल नहीं है, अगर जेन जी की बात की जाए तो एक खूबसूरती मैं जो देखा कि इनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है। ये पुलिस सामने खड़ी है, उसके सामने डांस कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो इनको डराना तो बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल भी डर नहीं है।
1: न शिक्षा दी, न रोजगार दिया, न वुमेन को बेसिक पब्लिक सेफ्टी थी, न पेपर लीक मुक्त भारत दिया आपने, आपने हमारे साथ हर दिन अन्याय हो रहा है, उसके बाद आपने न्याय का अधिकार भी नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं कि वोट चोरी के खिलाफ भी चुपचाप बैठ के सहते रहे।
2: जिस तरह का डर का माहौल ये बना रहे हैं, वही हमारे आंदोलन की एक सफलता है, पहली सफलता। दूसरी सफलता मुझे लगती है कि जिस तरह की जो ये फोर्स ये लेके आए हैं कि कोई कह रहा है 40,000, कोई कह रहा 50,000, एग्जैक्ट डेटा तो सरकार ही बताएगी कितना है, 40,000 की फोर्स दिल्ली में लेके आना, पैरामिलिट्री फोर्स लेके आना, अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ उनको खड़े कर देना, ये भी एक तरह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और तीसरी बात, ये चाहे जितने मर्जी जतन कर लीजिए, 500 मेट्रो स्टेशन बंद कर लीजिए, रास्ते ब्लॉक कर दीजिए, ऊंचे ऊंचे बैरिगेट्स लगा दीजिए, हम सब लोग क्या कह रहे हैं, जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, हम सब लोग वहां जाना चाहते हैं, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। ज्ञानेश कुमार ने जो किया है वो देशद्रोह है, आखिर हम जाएं तो जाएं कहां।
3: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन।
4: आज आपको बता होगा संदीप, दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक प्रेस ब्रीफिंग की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो CJP की नोटिस थी इस प्रोटेस्ट को लेकर जंतर मंतर की, वो 10 दिन के पहले मिल जानी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि देखिए पहले जो हुआ तो उनके क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है, तो हम इतने कम टाइम में तो उन्हें नहीं देंगे, क्या कहते हैं?
2: ये सब बहाने हैं। और आप सोच के देखिए कि किसी भी प्रोटेस्ट के लिए अगर परमिशन मांगे जाए तो क्या सरकार परमिशन देगी, क्या पुलिस परमिशन दे? कभी परमिशन नहीं देंगे। हमारा काम था, हमने इंटीमेट करना और उनको इंटीमेट कर दिया कि 10 अक्टूबर को हम आ रहे हैं, देश भर के युवा आ रहे हैं, देश भर के लोग आ रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के नौजवान, देश के युवा, देश के लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप उनको फैसिलिट करिए।
1: सवाल उठ रहा है कि सब बंद है, मेट्रो, रेलवे, यातायात, तो लोग पहुंचेंगे कैसे जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पे? कोई बात नहीं, हम भी अभी कुछ देर में जाएंगे हेलमेट खरीदने, हमें घरों से भी उठा ले रहे हैं।
5: भारत के युवा हैं, ये इनको कोई नहीं रोक सकता। जो लोग ऐसे भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, कितनी ट्रेनें कोई रोक लेगा, कितनी कनेक्टिविटी कोई रोक लेगा, कितनी सड़कों को कोई जाम कर देगा? भारत के युवा हैं, दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता रखते हैं और पीढ़ियों ने ये किया है, तो ऐसे में कोई उन्हें नहीं रोक सकता।
6: आरजेडी MP मनोज झा इज विद मी। सर, द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वी आर लुकिंग इन द नेशनल कैपिटल, द डिसीजंस दैट हैव बीन टेकन, 57 मेट्रो स्टेशंस,
7: प्लीज यार, नेम देम, व्हाई आर यू स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज व्हिच ट्राइज टू कवर थिंग्स? दिस इज मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर मोदी हु हैव डन इट, कॉल इट बाय नेम, not Delhi police. The social media post from Delhi police comes from MHA. I have never seen in last 40-45 years. I've seen enough of protest in this country, particularly in Delhi. I mean, that's, fear is writ large on their face. And what to, I mean, what is the aim? To protect somebody who is actually, metaphorically can be seen as somebody who represent the architecture of illegality and fraud.
6: So prevention from the unruly mob is the word that...
7: Do you agree with the choice of the word? Please look at my comments on that. I've been a student of history. I know the choice of words reflect the mindset. The mindset is sick. They need treatment.
6: Congress MP Renuka Chaudhary is with me. Ma'am, looking at the widespread protest tomorrow in the national capital, the decision has been taken. 57 metro stations, as many as at least 30 trains have been shut in Delhi. How do you see such developments and decisions being taken by the administration? They are saying that they wanted to avoid unnecessary law and order situation.
8: This is self-inflicted injury of the government. I mean, is it really necessary to do this and inconvenience the common man? What could have been solved easily had they sat across the table, called people in and talked to them. That's all the citizen is saying here.
9: Bilkul ji, but ede vaste kalla oh aise gal di wait nahi kare, oh raaton raat hi utthe pahunch gaye ne bajaye ki din di wait
10: kare.

0: नहीं, पूरे चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दे, ना आने दिया मुझे, तो इसीलिए मैं पहले ही आ गया हूँ यहाँ पे।
1: उन्होंने हमें रोक के बाकायदा पूछताछ करी कि कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, फिर हमने उनको चकमा दिया और वहाँ से यहाँ तक पैदल पहुँचे।
2: भाई सुबह तक जो भी होता हमें सुबह तक पुलिस आने ही नहीं देती, अभी इतने चेक पोस्ट हैं तो अब सुबह तो फिर क्या ही हाल होता आपको खुद पता है।
1: 10 अक्टूबर की तारीख है, रात के करीब 2 बज रहे हैं। जंतर मंतर की ये सड़क है जिस सड़क पर आने की पूरी लड़ाई है, और यहाँ पर रात के 2 बजे से ही थोड़ी सी भीड़ आप देख रहे हैं कि जुटनी शुरू हो गई है। कुछ प्रोटेस्टर्स आ गए हैं, तो कुछ प्रोटेस्टर्स इस सड़क पर यहाँ पर खड़े हैं, इक्का दुक्का संख्या में ही हैं अभी, लेकिन कुछ लोग आ गए हैं। एक व्यक्ति यहाँ देख रहे हैं आप मेरे साथ हैं, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम जासिम अली खान।
1: कहाँ से आए और आप प्रोटेस्ट कल से है, आप रात के 2 बजे अभी से क्यों आए हुए हैं इस सड़क पर और क्या है अभी कैसे आए हैं?
3: देखिए, जिस तरीके से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, पंडारा रोड पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की, उसके बाद वहाँ से यहाँ तक हम पैदल आए हैं क्योंकि चारों तरफ पुलिस का बैरिकेडिंग है और बहुत सुरक्षा लगा दी गई है पूरे दिल्ली में। और इस वक्त आने का मकसद ये है क्योंकि सुबह में दिल्ली पुलिस हमें यहाँ तक पहुँचने नहीं देगी, वो सबको मालूम है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बैरिकेडिंग की हुई है सुबह में पता नहीं क्या हालात हो। देश की राजधानी को इन लोगों ने छावनी बनाकर रख दिया है, ये हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के तहत यहाँ खड़े हुए हैं, और अधिकार जो संविधान हमें देता है कि हम देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी खड़े होकर अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं।
1: आप कहाँ से आए हैं?
3: मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, लेकिन ओखला से मैं आया हूँ।
1: आपको आने में कोई चेकिंग, कोई परेशानी? कितनी जगह बैरिकेडिंग देखी हमें एक बार थोड़ा समझाइए कि जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं अभी अभी से ही क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं?
3: देखें, जिस तरीके से हम वहाँ से आए तो 2 जगह हमारी गाड़ी को चेक पोस्ट पर रोका गया और वो बाकायदा चेकिंग करते हैं, पूरी गाड़ी की चेकिंग करते हैं, फिर हमसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको तो नहीं बताएंगे कि हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, वरना वो हमें वहीं से रोक देंगे। तो हमने उनको बताया कि हम फला जगह जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें आगे आने दिया, और उसके बाद हमने पंडारा रोड पर आकर वहीं पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की, और उसके बाद से हम यहाँ पर पैदल वहाँ से आए हुए हैं। लेकिन पैदल रास्ते में भी इंडिया गेट पे भी हमें वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, जो लोगों को भगा रहे थे वहाँ से, उन्होंने हमें रोक के बाकायदा पूछताछ करी कि कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, फिर हमने उनको चकमा दिया और वहाँ से यहाँ तक पैदल पहुँचे हैं।
1: आप पुलिस को चकमा देकर के?
3: बिल्कुल, क्यों नहीं पहुँचेंगे, इस देश का युवा चकमा देना जानता है।
1: इस बैरिकेड के आगे चकमा देने की कोई योजना है, प्लानिंग है?
3: बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, जब रात के 2 बजे हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो अभी सुबह में बहुत वक्त है, क्यों नहीं, इंशाल्लाह जंतर मंतर।
1: मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपके और दोस्त साथी किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की बातें हो रही हैं, एक बार प्रशांत इधर दिखाइएगा।
2: भाई सुबह तक जो भी होता हमें सुबह तक पुलिस आने ही नहीं देती, अभी इतने चेक पोस्ट हैं तो अब सुबह तो फिर क्या ही हाल होता आपको खुद पता है।
1: कहाँ से हैं सर आप?
0: मैं नागपुर से आया हूँ।
1: अभी रात के 2 बजे या प्रोटेस्ट साइट पर आ गए?
0: बिल्कुल, डायरेक्ट जो है ट्रेन से उतर के मैं डायरेक्ट यहीं पे जंतर मंतर पे आया हूँ।
1: हम लगातार ये देख रहे हैं कि ट्रेन में भी कुछ लोगों को महाराष्ट्र से और पुणे से कुछ यात्री आ रहे थे, उन्हें मध्य प्रदेश में रोका गया, डिटेंशन हर तरफ चल रहा है, ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोज हैं। आपको रास्ते में कहीं रोकने की कोशिश हुई? आप इंटरस्टेट ट्रेवल करके आए हैं?
0: मैं कल जो है ना सुबह में ट्रेन में बैठ गया था नागपुर से, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया था फरीदाबाद से, जो ना मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तो मैं कैसे कैसे वहाँ से उतर के जो है अपना यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ इतना रात को, 1 बजे रात को, तकरीबन 1 से 1.5 बज रहा है अभी।
1: रात के 1 से 1.5 बज रहे हैं, और आप यहाँ पर कब तक अभी रहने वाले हैं? और क्योंकि प्रोटेस्ट में तो अभी काफी समय है, अगले दिन 10-11 बजे का कॉल दिया गया है।
0: मैं 10-11 बजे इसलिए
4: थोड़ी जी गलबात जी उतनी यूनिवर्सिटीज ने जिदे करके काफ़ी स्टूडेंट जड़े अवेयर रहेंगे ने, अलर्ट रहेंगे ने, उन्होंने भी गलबात सुनेंगे छोटी जी। बट उस तो पहला मैं लगता एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक भी ले ली, अज का प्रोग्राम जरा हमेशा ही तरह मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम 7 to 8 तो संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक तुम सुनते हो। अज का प्रोग्राम इस तरीके ने चलेगा, इस गलबात होर भी सुनावे लोकल, वैसे आप काफ़ी गलबात कर ली बट काफ़ी गलबात जड़ियाँ ने हले करने वाली हैं, एक छोटी जी ब्रेक तो बाद।
5: ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
6: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
7: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
6: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
7: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
6: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
7: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
6: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।

0: भारत की पूरी राज व्यवस्था अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि राष्ट्रपति के पास पावर्स कम होती है, बल्कि ना के बराबर ही होती है, वो गार्डियन की तरह वो ऊपर होती है।
1: ओ, थोड़ी जी गलबात जेड़ी है वक्र वक्र
2: नमस्कार
1: आज
2: भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है, वो दिन जिस दिन सरकार स्वयं सभी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए संविधान कानून सबको एक तरफ रख कर लोकतांत्रिक पैमानों सब चीजों को नष्ट करते हुए मनमानी पर उतर आई है। आज की तारीख में अगर कॉकरोच जनता पार्टी हो या विपक्ष हो या कोई भी हो, अगर ये लोग एक भी प्रदर्शन नहीं करते तब भी ये शक्ति प्रदर्शन बताता है कि सरकार हार चुकी है। ये जो डर है ये आप देखेंगे सब जगह दिखाई दे रहा है। जब मैं ये कह रहा हूं कि कानूनों का लंघन हुआ है तो कैसे हुआ है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि सरकार ने ये जो कुछ किया है ये कुछ भी करने का उसको अधिकार नहीं है, और सीजीआई की जिस टिप्पणी कर दी गई है करीब के आसपास मेट्रो स्टेशनों पे।
1: सो ये सी जी अज दी वैसे सीजीपी हो रही है तो उत्थे जो कुछ होया क्योंकि बेंगलोर च ऑलरेडी इन्होंने काफी हंगामा किया, वधिया प्रदर्शन किया। ध्रुव राठी जेडे ने एक बड़े वड्डे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ने, लोग उन्होंने बड़े चंगे तरीके देखते हैं, तो उन्होंने भी उत्थे पहुँच के तो अपनी गलबात रखी तो विच वॉज वंडरफुल, क्योंकि प्रकाश राज ते होर कई बॉलीवुड नशीरुद्दीन शाह उन्होंने भी उत्थे पहुँच के तो दीपके दे नाल भी मुलाकात की, क्योंकि ये दीपके तुहानू पता भी ये मेन कॉकरोच जनता पार्टी के जेडे लीडर ने, ते अपने आप च ही वधिया चीज़ां जिहड़ियां ने सामने आ रही हैं। सो काफ़ी कुछ जिहड़ा यूथ लगता भी हुण रुकन वाला नहीं हैगा। चिराग पासवान ने भी कहा भी ये इंडियन यूथ है तो इधर उधरों रस्ते लभ के इन्होंने तो पहुँच ही जाना उत्थे, सो इन्हां नूं रोकिया नहीं जा सकता। होर भी लीडर जिहड़े ने यही गल दा गलबात कर रहे ने कि भी आपां इत्थों रुकन वाले नहीं हैगे, सो इस करके इन्होंने पहुँचना। सो अज दा प्रोग्राम भी पहुँच गया इख्तिमाम ते खात्मे ते पहुँच गया। सो ये नाल ही अज्ज का प्रोग्राम जिहड़ा इत्थे समाप्त करन दी इजाजत दो। आई होप तुसीं खबरां ते गल्लां पता जिहड़ियां ने अज्ज दे प्रोग्राम दे पसंद कीतियां होणगियां। कल छुट्टी मारांगे ते परसों नूं फिर मिलांगे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक, मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम नूं 7 to 8 ते संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक ये प्रोग्राम तुहाडी सेवा च पेश कीते जांदे ने। अज्ज दा प्रोग्राम इत्थे समाप्त करदे हां। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड शब्बा खैर टू ऑल जी। थैंक यू।
3: The time is 8 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: अल्बर्टा में संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए 8 मिलियन डॉलर का निवेश कर रहे हैं, ताकि अल्बर्टा के परिवारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए खतरा बने गैंग्स, एक्सटॉर्शन और आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यह धन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक मजबूत निगरानी, खुफिया जानकारी, डिजिटल फोरेंसिक और जाँच क्षमताएं प्रदान करेगा, ताकि संगठित आपराधिक गिरोहों को खत्म किया जा सके और अल्बर्टा वासियों को सुरक्षित रखा जा सके। अल्बर्टा सरकार की ओर से एक संदेश।
2: पंजाब तो प्रसिद्ध पत्रकार जितेंद्र पन्नू जी नू सोमवार तो शुक्रवार रेडियो सुरसंगम 94.7 एफएम ते सुनो। हफ्ते दे वी घंटे रेडियो सुरसंगम, रेडियो सुरसंगम .ca, फोन 403-585-0910। रेडियो सुरसंगम।
3: वर्क फर्स्ट अल्बर्टा आपकी कहानी बदलने में आपकी मदद कर सकता है। यह नौकरी चाहने वालों को प्रशिक्षण और संसाधनों से जोड़ता है, ताकि वे सार्थक रोजगार पा सकें, और यह एम्प्लॉयर्स को योग्य उम्मीदवार ढूंढने में भी मदद कर सकता है। इससे अल्बर्टा के ज्यादा लोग स्थायी कैरियर के लिए तैयार होंगे और

0: एम्प्लॉयर्स को जरूरी कुशल कर्मचारी मिल सकेंगे। workfirstalberta.ca पर जानें कि आप अपनी कहानी कैसे बदल सकते हैं। अल्बर्टा सरकार का एक संदेश।
1: दोस्तों डैन सिद्धू लाइव इन लोक सत तुसी हर एतवार 5 बजे तो लेकर 7 बजे तक सुन सकते हो। समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक पक्ष दे मसले मिंटू गुरे सरिया तो पंजाब ते भारत दीआं खबरां। स्टूडियो नंबर 4 7 7 1947।
0: अल्बर्टा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जुर्म के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की मदद के लिए $8 मिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं, ताकि अल्बर्टा के खानदानों, कारोबारों और कम्युनिटीज के लिए खतरा बनने वाले गैंग्स, एक्सटॉर्शन और मुजरिम नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। ये फंडिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मजबूत निगरानी, खुफिया मालूमात, डिजिटल फॉरेंसिक्स और तकनीकियाती सलाहियत फराहम करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइज्ड मुजरिम ग्रोहों का खात्मा किया जा सके और अल्बर्टा के बाशिंदों को महफूज रखा जा सके। हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से एक पैगाम।
2: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार
1: रोड ते नवा ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
2: सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहुंदे हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया
3: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 403-903-6757
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स
4: पूरा साल हो गया गाना सुनती नू बस कैलगरी च कार लैण दी फीलिंग आई लई जायो वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है उन्हां दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिदा है
5: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल जिन्ना दी सलाह नाल हुण कार एक नहीं दो लवांगे पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है
4: जी हां मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445
6: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
7: की होया
6: बस पूछ ना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
7: ओहो रह गए ना फेर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 587-832-1208 या रमन वड़ैच 780-753-0001 सोनिक इंश्योरेंस
3: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह 28वीं सालाना सिख नेशन खूनदान मुहिम दा समा आ गया है नवंबर 1984 विच होए सिख कतलेआम दी याद दे विच ए मुहिम हर साल नवंबर महीने दे विच चलाई जांदी है आओ 1984 दी सिख नस्लकुशी दे मजलूमा दी याद दे विच एक एक बूंद नाल किसे दी जिंदगी रोशन करिए सिख नेशन दा ए उपराला मानवता दी सेवा चढ़दी कला सरबत दे भले ते निष्काम सेवा दा प्रतीक है कैनेडियन ब्लड सर्विसेज वास्ते कैलगरी वासियां कोल इस वारी 3 बार खूनदान करन दा मौका है 7 नवंबर 14 नवंबर अते 21 नवंबर नू ग्रैंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलगरी दे विच खूनदान करन लई बुकिंग करवाओ बुकिंग करवाउण लई जां वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकदे हो बिल कालों जी नू 403-617-9045 ते जां फिर कॉल कर लो तरसेम प्रहार होरां नू 403-701-1308 ते